मेरी सेजड़ी आडंबर बने अवनाशी वर सुनिया प्रभ आवत सुनिया मेरी सेज सोही देख मोही गुरु के सिख दा हिरदा हिरदे दी सेजा हिरदे दा मंदर उदो जगमगा उदो शोभनीक हों जदो साहेब प्यारा ए हिरदे की सेजा के उ बैठा इस आप प्रतख दीदार दिता है जदो वसद हिरदे की सेजा के उ फिर गुरु के सिख के रोम रोम शुकराना निकलता है।

राग सुही शब्द भी सुही कीर्तन भी सेव सुही शब्द है लाल रावया कमल गतिरी सखी बतावो मुझे मुझे

भगत रविदास जी अपने शब्द विच फरमान कर दे ने कि निंदा करन वाला मनुख कितने भी चंगे कर्म कर लवे उदे कर्म कीते हुए सारे निष्फल चले जांदे हैं। जिमें कि 68 तीर

बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसे महापुरख दी। ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे

गुरु अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर दे ने, निंदक दी ए निशानी है जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों

0: काची देह मोह खुन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी काची देह मोह खुन बांधी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी तावत भरमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता विचरित विकल बड़ो अभिमानी परधन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हितानी बलवंश छप करत उपावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी कारण करण सम्राथ श्री धर राख ले हो नानक के स्वामी कीरत करण शरण मन मोहन जोहन पाप बिदारण को हर तारण तरण सम्रथ सवै विध कुलह समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोयो गत धो मूर्त घरी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो हो छो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिख्या संत नाम पद नानक राम रंग आत्म स्यों रहो रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार धरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता पाई अर बंधप बुझन की सब सूझ परी ब्रदमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक घरी कर गहले हो कृपाल कृपा निध नानक काट भरम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महा मुघना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत घुगना सुत बनता साजन सुख बंधप तास्यो मो बढ़ो सो घना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अघना मृत मझार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना
1: सत सूरा सीर बलवंत सत भाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज धुर धवल दुजा सेत बैकुंठ बीना पर सह संत प्यार जह करतारे संजो सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जो नाम नाम नाम रस खान हर भोजन नाम रख सदा चाहे मुख मिष्ट बानी तन सतगुरु सेवियो जिस बसाए गति अगम जानी फुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यत जन्म कल उजरै गुर परस्यो अमर प्रकाश बारज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जोव रिति बसै बावां जो तीन लोकांतर मोह हृदय वसै इक हियो सोय रस तिन ही जातो मुखो भगत उचरै अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत परस्यो गुरु सतगुरु तिलक सर्व इच्छ तिन पायो चरण तपर्स कियत चरण गुर अमर पवर रह हाथ तपर्स कियत हाथ लगाए गुरु अमर पै जी तपर्स कियत जी गुर अमर बन जाए नैन तपर्स कियत नैन गुर अमर पिख जाए श्रवण तपर्स कियत श्रवण गुरु अमर सुनि जाए सक्यात सो हियो जित हियो वसै गुरु अमरदास निज जगत पित। सक्यात सो सिर जालप बनै जो सिर निवै गुरु अमर नित। सक्यात सो सिर जालप बनै जो सिर निवै गुरु अमर नित।
2: सच नाम कर दास सो दृढ़ नानक संग रियो काते अंगद लैण परिगत तास चरण लिवरियो तित कुल गुरु अमरदास आसा निवास तास गुण कमण वखाणा जो गुण लखिया इन्हें गुण अंत ना जाना वो तो विदाता निरमय हम संगत उली उदरन गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरन निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी अर्घवंत आनंद रूप निर्मल विनाशी गुण गावे बेअंग अंत एक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सो जान प्रभुत्व में मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर बियो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण दो तेरे हो सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसरियान नाई अवर उर्ख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम ला मन सब

मल्लो जय कृपान होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परसियो ते फिर बौड़ जून ना आए ते बौड़ फिर जून ना आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तित करिया सिद्ध साधक ते तीस को तिरकी मना परिया ब्रह्माद सनकाद सेख गुण अंत ना पाए अगो मी जाए पूर सर्व रो समाए जे गाडी सिलग दियार प्रभ से जान लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसियो ते इत उत सदा मुक्त प्रभ दाता दातार परियो जातक इत सरना मिले दान संतरीन जे लग फौज तरना विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर बाबा दियो दर्श मन जाओ भगत इहो मन ठहरा बलियो चिराग अंधियार में बलियो चिराग अंधियार में सब काली उतरी एक नाम धर्म परगत सरल यार पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म जनक सो जिन जानिया उन मन रथ दनिया सत संतो समाचन अभरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे इहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही गणिया नानक नाम नरिंजन जानियो इनी भगत प्रेम लिमलाई दादे अंगत अंग संग प्यो शायर तिन शब्द सुरत की नीव खाई गुरु अमरदास की अकथ कथाएं एक जी कछ कही ना जाई सोटी।

दिन सुरैन मन माहे बसता तू कर कृपा प्रभु अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकात कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहिए तो है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बाल बाल जाओ श्याम सुंदर को अकाथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी मूलालन से प्रीत बनी आओ तोरी ना तू कैश।

महामद्भई किंकनी सबद चनत काल खेल पाए जी। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके, इस बम जान खान धरत ही चार सच साच सिर लिया।

सुतदारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत तै मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। असा महला चौथा छंत घर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास धन गुरु रामदास।

बाजार, बाजारी बाजार में आकड़े बाजार, गावे राजे रानिया बोले आल पतार, लटकियां के मुंदड़े लटकियां के हार, जितन पाई नानका सेतन हो वे छार।

0: सबको नमें आपको पर को नमें को धरता राजू तोलिए नमें सगोरा हो अपराधी दूणा नमें जो अंता मिर्गा शीस नवाये क्या थिए जार दे कुसुधे जाए
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजुस बुगुल समादंग मुखचूट बिबुखन सारंग त्रैपाल त्याल विचारंग गलमाला दिल लिलाटंग दो दोती बस्तर कपाटंग जय जानस ब्रह्मं करमं सब फोकट निचो करमं कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु बाट ना पावे पौड़ी
2: पौड़ी कपड़ो सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना।

हर रंगे रम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाई बैठे कृपा सारिया चीज करन मन पाउन दे हर बुजन नाई हारिया कर फुरमास खाया वेख मैल तू मरन विसारिया

अंगद अनंत मूर्त निज धारे अगम ज्ञान रस रस्योहियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो।

पंड मंगन भी आए पंडो में दोस्ती पंडो चले रहा है पंड मुआ पंड पालिया पंड बंदा स्वाख मंदा खेत राजा पंडो ही पंडो के पंडे बाजना कोई ना पंडे बारा कुछ जा सोए।

शब्द काली कोयल तुम कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिर हों जाली। इस दी बंदिश पैरवी ते शिवरंजनी दे मिलाप, दो रागां दे मिलाप दे विच है आप प्यार।

आप जी याद होएगा जिस पंक्ति उते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जी बेनती की सी इस पंक्ति नु अपने नाल लेके जाओ। वो केड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। हुण जिसनु जीवन जीना आंदा है उसे दी ही जीवन दी यात्रा सफल हो सकती है। जिसनु जीवन ही नहीं जीना आंदा वो किथे पहुंचेगा? वो किथे भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विधि ना है। असी सोचते हाँ असी सक्सेसफुल हो गए, असी कामयाब, पर सक्सेस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बींग ए सिख सक्सेस नू गुरु बाबा जी चो ही समझना है ना। कि गुरु साहब सक्सेस किसनू आखते हैं? गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज दी निगाह च सक्सेसफुल कौन है, सक्सेस की है? वो है कि जीवन दी यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिदा है उथे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सेस दे उते शब्द उचारदे हन, कहंदे हन

प्यारी गल आ समझण वाली, स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ के में पूरे होते हैं, मैनू सुख किस तो के में मिलता है, ये नहीं कि इसनू मैं तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख के में मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, व्हाट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर केंद्र कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरिया नहीं होंदिया तो केंद्र दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। केंद्र एथे भी जीना नहीं आए, एथे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे नू दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचने के वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जो पूरी नहीं होंगे तो कहते बेशक भावे आवो तो भावे जाओ, जो मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तुम जीना ही नहीं है महाराज जी, असी बड़ी तरक्की कीती है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता, व्हाट अबाउट ऑल दीज मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इतनी डेवलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कीती है, तो आखदे हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान दे रोगों का इलाज कर ली, इतने वड़े वड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत वड़ी चीज नहीं है, कितने कितने भयानक रोग जो हैं उन्हां दा इलाज आसानी दे नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोस अच्छी तरह हो सकता है, तो तुसी आख दे जीना नहीं आता। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जीना आ गया। तो महाराज दसो, एक शिष्य पूछता है सच्चे पातशाह दसो फिर किमें नहीं जीना आ गया, असं तो सोचते अस बड़ी तरक्की कर गए, अस डॉक्टर बन गए हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसी आखते हो जीना नहीं आता। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है, कहते हैं

0: सकल जग है जैसे सपना, बिन सत लगत न पार, बारू भीत बनाई रसपत, रहत नहीं दिन चार, ऐसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार,
1: अधू समझ कछ बिगड़िया

अनक जन्म बीती अन परमाई, अनक जन्म बीती अन परमाई, कर वासना देवे दुत्र माई।

चारो राम को पोप चारो राम को मेरा कांटा ला दिया जाए हम बन जारो राम को हम

हर हर नाम निदान है, गुरमुख पाया जाए तन मन शीतल हो, शीतल हो हर हर नाम निदान।

सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सत समावे। एक कह रहे प्रभु राम नाम देवा मसू।

साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी की शरण के अंदर रह रहे बड़े पतवंते कवि जिन्होंने साहब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन चरणा अंदर बिने की सतगुरु जिन्या गल्लां आप जी ने कहे हैं जितने वचन महाराज जी वो सब सच हुए ने पर गरीब नवाज सचे पातशाह आप समय नूं जाणनहार हो समय दी ठीक समय अनुसार पहचान करन वाले सतगुरु जी आप जी ने कई दफा किया भई पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउणा पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउणा पर पंथ दी अगवाई करन वाला साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप तो बगैर कौन है। और गरीब नवाज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह नूं कवि ने हाथ जोड़ जोड़ के बेनती की थी साहिब सचे पातशाह महाराज पंथ की राखो ताकि ग्रंथ की मानता रह जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हों अजे गुरता गद्दी नहीं सी बख्शी गरीब नवाज सचे पातशाह जी चरणा च जो सिखा ने बेनती की महाराज पंथ की इज्जत पत आबरू आप जी ने बचाई है ते पंथ नूं कुछ ऐसे नियम दे जिस दे नाल इन्हां दी सारी रहिंदी दुनिया तक इन्हां दी रही जावे। ते साहिब गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने सिखां नूं एक वचन कहा सी श्री आनंदपुर साहिब दी धरती दे उपर बैठे हां कि पंथ जिन्ना चिर शब्द ते लड़ लगा रहेगा अकाल पुरख दी पूजा विच लगा रहेगा उन्हां चिर एक कुराहे नहीं पै सकदा जिन्हें अकाल पुरख की जदों इसने पूजा छड़ दित्ती ना ये भटक जाएगा कुराहे पै जाएगा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह जी दियां ओ गल्लां अते बचन जिहड़े हन श्री अबचल नगर हजूर साहब विखे गरीब नवाज सचे पातशाह ने भाई प्रहलाद ते भाई नंद लाल जी की समस्त पेश कीते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज उस समय का वातावरण जो रहतनामे अंदर लिखिया है गरीब नवाज वर्णन करते हैं।

महाराज कलगीधर पिता ने भाई नंद लाल नूं कहा भाई आ तैनू दसीए भी साडे रूप केड़े केड़े ने केड़े रूप दे तुसी अज तक दर्शन कीते ने ते केड़े दे दर्शन नहीं कीते ते केड़े दे आद जगाद तुसी दर्शन करने ने।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे, भावें किक्कर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है। झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे, ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सचे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे। ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा। वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा, इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

गुण आप जी ने कथन कीता। दूजा रूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर जितने अखर आए ने ना, जिन्हिया लगा मात्रा लिखिया गई ने, ए मेरे अंग ने। भाई नंद लाल जी, दूजा रूप साडा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है, जेड़ा पहली पातशाही तो लैके दस पातशाहियां तक समाया है। लबा लब भरिया होया, हरेक खजाना इस दे अंदर है। इस नू बड़े अदब सत्कार दे नाल गुरु मनना, बड़े अदब दे नाल इस नू पढ़ना, बड़ी सुचमता ते पवित्रता रख के हाजरा हजूर जहरा जहूर जानना, जिवें साडे तो तुसी भय खांदे हो ना, इसे तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो भय खाना सिखो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जाहर गुरु, जिन्हें इस दे अंग ने ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे, वो साडे अंग समझो।

मैं तेन एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने कहा गुरु ग्रंथ साहब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरा भरा हो जाए समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमां दी बेदबी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करते कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी होंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहब दे अंगां नूं ला दिने आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी दे पवित्र चेहरे नूं साडा मैला हथ लग। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं हाजिर गुरु मनोगे ते साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्हां लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान साहब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेके हाजरा गुरु मने। अगले वचन साहब सचे पातशाह जी ने कहे।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरणा च मथा टेकिया, पंज पैसे श्री फल गरीब नवाज ने परकर्मा कीतियां ते साहिब सचे पातशाह महाराज आसन ते विराजमान हो गए। वेखद्या वेखद्या सिख बैराग अंदर ने बैराग दा समा बनिया होया, ए विछोड़ा सहया ना जाए। भाई दया सिंह आए चरण पकड़े साहिब जी दे, ते चरण हाथ विच ना आए ते वैराग दे अंदर आंसू गिर पए। महाराज ये कड़ा रूप है? भाई दया सिंह ये जड़ा तू वेखना ये साडा वास्तव स्वरूप नहीं, वास्तव स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर समा गया। इस करके साडे तेनू चरण नजर आ रहे ने, हाथ च नहीं आए तेरे च, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणी लग। उस तों बाद भाई दया सिंह जी ने उठ के मथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकिया, सारी सिख संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं मथा टेकिया। वेखद्या वेखद्या साहिब जी ज्योति ज्योत समा गए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने ए वाक कहे सन सर्व सिखां दे अंदर, भई सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मैं ले। शब्द गुरु मनदिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने गुरियाई अपने हथी दिती ते नमस्कार करके ज्योति ज्योत समा गए। उस समय दा वातावरण एहो जिहा सी, सारी सिख संगत दे अंदर वैराग दा शब्द पढ़िया गया।